सच्चे के गुण गा गुण गावत तेरी उदरस मैल बिनस जाए हो मैं दुख है जन्म कर

लुक अंदर छानी याद रख अजराइल फरेश्ता तिल पीड़े कन भाई जोगा सिंह दे कन्ने च आवाज पई भाई जोगा सिंह ने झट जेड़ा पैर पौड़ी ते रखे असी हेठा कर लिया पिछे मुड़ मैनू ता कोई वेख नहीं प्यारी सास संगत अद्धी रात भाई जोगा सिंह दूसरी वेरी फिर हूं कोई नहीं वेख पर जिस वेले पौड़ी ते पैर रखे फिर कन्ना आवाज आई केड़ी।

0: भाई योगासन पहुंचे, हजूर ने दूर ही तक देखे, अब प्यारी सास संगत जिस सिख तू बगैर मेरा काम नहीं सी ना चलता, वो भाई जोगा सिंह आ गया। आ जा जोगिया साढ़े कोल आज। भाई जोगा सिंह सुन के बड़ा हैरान, मैं तो समझिया सी कि गुरु साहब मेनू जोड़िया च खड़ा करनगे, पर ए तो प्यार नाल पै बुलांदे। भाई जोगा सिंह साहबां दे कोल पहुंच, भाई जोगा सिंह भाई आखा जी आया, सोना सिख तू है सरदार बीबा, घर नार परिवार नु छड़ के ते साडे नाल ते कीता प्यार बीबा। भाई जोगा सिंह सोच मन, मैं तो समझिया सी गुरु अंतर जामी, जे अंतर जामी होंदा तो हुशियारपुर दी करतूत नु जानदा, जे हुशियारपुर दी करतूत नु जानदा होंदा तो मेनू सजा दे, पर गुरु तो मेनू प्यार पिया कर। जे गुरु अंतर जामी नहीं, जे गुरु इथों दिया नहीं जानदा तो मेरी दरगाह किवें बां फड़ेगा, 12 साल एवें गुरु की सेवा की। आखो श्री अंतर जामी सतगुरु सोचण लग, सिख नू काम दे कुंड विचों कढ़िया है, हुण अशरदक दे खाते पिया पैंदा, गुरु नू पता है शरदा तू हीर पिया होंदा। हजूर ने कहा जोगिया मेरे वल तक। भाई जोगा सिंह ने तकिया, इतना नूर सी साहबा ने चेहरे ते, नजरां नीवीं हो। हजूर ने फिर किया जोगिया मेरे वल क्यों नहीं देंदा, तकदा फिर खंद। तीजी वेरी जिस वेले साहबा ने किया जोगिया मेरे वल तक, भाई जोगा सिंह ने जिस वेले कलगीधर पातशाह वल तकिया, आई जोगा सिंह हैरान हो गया, कंबन लग गया कि तकदा है कि श्री आनंदपुर साहब दे सोने तख्ते बहन वाला ते राती वेसवा दे चवारे ते पहरा देण वाला इको ही है। दोवे हथ रो पिया भाई जोगा सिंह, अच्छा मैं पापी हां मेनू बख्श, पर मेरा जेड़ा पोल है संगत च ना खोलो। आखो श्री भाई अगे पिछे सजा दे लिया, जे संगत च बोल न कर। हजूर कहन लगे जो गया मैं तो तेरी करतूत नू वेख के अडिठ पिया करदा, पर तू कहन लगा तेरे मन च फुरना बड़िया कि गुरु नू पता ही कोई नहीं, मैं तो सब कुछ हर अंतर जामी जाने फिर बोलत आप, ते तू कहना गुरु नू पता है नहीं। तो भाई जोगा सिंह कहने लगा महाराज ए भी चंगा होया, आज पता लग गया है कि तू अपने सिख दी रखिया कर। कलगीधर पातशाह जी कह लगे एदा मतलब भाई जोगा सिंह तो मेनू अजमाया है, मेरी अजमाइश की थी है। भाई जोगा सिंह चुप कर गया ते माध गुजरी दे लाल दे सामने तकिया ते क्या जो गया मैनू अगे भी सिखा ने बड़ा सुनाया पर मैं इम्तिहान च पूरा अजमायश च पूरा पहले जामे विच सिख ने अजमाया बाबर दी जेल च अरदास की थी, मैं उथे पहुंच के ते बाबर दी चक्कियां पीटी। पंजे जामे च दिल्ली दी संगत ने अजमाया के चंदू हंकारी दा नाता नहीं लै, तो जो गया मैं संगतां दा हुक्म सिर मत्थे रखे, जे मैं कुड़माचारी दी असीत च चंदू दे घर जांदा चंदू मेरे ते फुल्लां दी वर्षा करदा, पर मैं अपने सिखां दा हुक्म मन के जिसले चंदू दे घर गया तां चंदू ने मेरे ते सड़दी बंदी रेत पाई, पर मैं अजमाइश ही पूरा बिधि चंद ने मेनू अजमाया छेवे दुशाले लैके भजा जाता पिछे बादशाह की फौज आ। बिधि चंद ने छेवे पातशाह का ध्यान करके पठियारी दे बढ़ते पठ भी छाल मार। हजूर कीर्तपुर बैठे सिखो बड़ी गर्मी हो रही है जल लियाओ, छेवे पातशाह जी दे शरीर ते जिस वेले जल पाया सिंघा ने तकिया हैरान हो गए कि साहबां दे सारे शरीर ते छाले छाले हो। अधूर कहन लगे जो गया फिर बिधि चंद नू तत्ती वारी लगन दिती, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗਰਮੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਈ। ਪਰ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਅਜਮਾਇਆ? ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨੇਤਰ ਸਜਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ,
1: ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਜੇ ਸਾਈ ਅਜ਼ਮਾਉਣ।

0: बादशाह मेनू बख्श, मैं भूल गया। हजूर कहन लगे जो गया रोई जा उतने तक जितने तक तेरे अंदरों हौमे अखां थानी पानी बन के बाहर नहीं निकलती। रोई जो गया तो मेरी अजमाइश की, तू तो ए भी कहन लग गया कि गुरु नू पता ही कोई नहीं। भूल गया रो रो के भाई जोगा सिख दा मन हौला फुल हो गया। अदू कहन लगे जोगिया भूल गए हां पातशाह, कलगीधर पातशाह जी कहन लगे जोगिया जी भूल गए ता जा तेरे बख्शिया आखो श्री राम। बस गल तो इतनी, भूल कर लेनी ए इंसानी फर्ज, पर जे भूल
1: असी प्यार नाल पढ़ो।

0: इतिहास लिखे प्यारी सास संगत, भाई गंगा सिंह ने दो लावा लिया ते दो नहीं।
1: You are listening to SikhNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.

परम सत्कार योग हाजिन साध संगत जी पेशतर इस दिन कीर्तन आरंभ किया जाए। दशमेश पिता जी दी असीस बख्शीश फतेह प्रवान करो। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी का शहीदी पर्व रल मिल के मना रहे हो, बतौरे कौम भागा वाले हो जेड़े अपना गुरुआं दे दिन दिहाड़ मनांदे हां। सवेर तो आसा पूर्ण आसा दीवार दा कीर्तन शरण कीता है। मोहतरम सत्कारयोग बागी जी तो गुरु दे जीवन संबंधी शहादत संबंधी विचार सरण कीते ने। आप ते दासां ने तकरीबन 10:30 बजे तक कीर्तन करना है। आप जिन्ने एक बैठे हो ध्यान पूर्वक सरवण करना। दूसरी अर्ज ए है कि इंग्लैंड दी इस फेरी समय इस स्टेज ते ए दास दा तकरीबन आखरी कीर्तन है। इस तो बाद आप दे दास ने वापस देश परत जाना है। ते जेड़े सज्जन थले चाह पीन पै गए ने वो शक के आ जाणगे। तुसी इस तरह एकाग्रता बख्शनी बहुत बहुत धन्नवादी होवांगा। रल मिल के गुरु दियां खुशियां प्राप्त करिए। शब्द आरंभ है धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह दा। बीत जय है जन्म अकाज रे।

बदरपा मैं जेहे कर वैरी इठे कर कर सिठा बेमुखा आपो बुरे जान कै सिठे लिख न सकन चित्रगुप्त सत समुंद समावन चिठे चिट्ठी हूं तुम्हार लिख लख लख एक दो एक दुथे कर कर संग हो रहे होए मस्करा सवा सब ठिठे मैं

हूँ बेमुख मंदा चोर यार जो आ रहो पर घर जो हंदा निंदक दुष्ट हराम खोर ठग देश ठगंदा काम क्रोध मद लोभ मोह अंकार करंदा विश्वास घाती आकृत घन

गुरु शरण साध संग लो न आवई। जैसो मन लागे पराधीन हीन दीनता में, साध संग सतगुर सेवा न लगावई। जैसो मन किरत बिरत में मगन हो, साध संग कीर्तन में न ठहरावई।

रैन सैन समय सब लोग में संजोग पो चकवी बेयोग सोग पागहीन जानिए। जैसे दिन करके उदोत ज्योत जगमग उल्लू अंध कन प्रचीन उन्मानिए। सरवर सरता समुद्र जल पूर्ण है त्रिखावंत चात्रक रहत बकवानिए। तैसे मिल साध सं

सोपाहीन पागहीन तपहीन बावरी दृष्ट दर्शहीन शब्द श्रुतहीन बुद्ध बलहीन सूते हस्त न पावरी।

अनाथ नमो सर तो सोना दानी नमो सो भिखारी मोसो न दीन दयाल न तो सर मोसो अज्ञान न तो सो बिचारी मोसो न पतित न पावन तो सर मोसो बिकारी न तो सो उपकारी

नैनों पे ठाकुर का रंग, साध संग बिन से सब संग, चरण चलो मार्ग गोविंद।

0: सकल जग है जैसे सपना, बिन सत लगत न पार, बारू भीत बनाई रसपत, रहत नहीं दिन चार, ऐसे ही ए सुख माया के उर्जो कहां गवार,
1: अधू समझ कछ बिगड़ियो नाहन, अधू समझ कछ

अचरज हैरी मन मूर्ख अज हूं नहीं समझत कदे हार्योनी हार्योनी नानक।

एक ओंकार सत गुर प्रसाद सत्संगियो एक ओंकार परमेश्वर का नाम है। परमेश्वर का नाम सत है, मिलता किमें गुरां दी कृपा दृष्टि दे सदका ऐसे सतगुरु जी महाराज फरमाते हैं।

आन रूती आन बोये फल न फूले ताए रे मन वत्र बीजन नाओ बोए खेती लाए मनुआ भलो समो सुआओ खोए खेड़ा भरम मन का सदगुर सरणी पाए कर्म जिसको

होम जग ते पुरब कमाई। भाव भगत परवान है होम जग ते पुरब कमाई। करके नीच सदावना ता प्रभु अंदर लेके पाई।

आकार के आकार नाना प्रकार श्री मुख शब्द गुर सिखन सुनाए हैं जोग भोग नहीं वेद जगत भगत जाहे असन बसन गुर सिखन लिभाए हैं निगम सेखादिक कथिक नेत नेत कर पूर्ण ब्रह्म गुरु ज्ञान सिखन लिखाए हैं।

जोगी संत्या मंजित्यान के नाम करता सुख मुटना काया कागर सत्या मन संतोख उपजे देने के विचार दे दे मंगा सा गुणा सब करे संसार।

0: परिवारा पर रंग सो पैर सुचराय सर्वपातन हो
1: नानपति जे रे पे कुरे सोना कोई महल्ला पैदा।

में शरीर का एक रथ कृतवा हो, जुग जुग फिर बटाइए ज्ञानी बुद्धि का। सतगुल संतों का धर्म गिरथवाओ, तेरे तेरा जत का जोर रथवाओ, द्वापर रथ तपे का सत गिर।

हे निरंकार, हे वाहिगुरु, हे अकाल पुरख, तू सारिया ते मेर कर, सारी सृष्टि ते मेर कर। तू मालक है, तू प्रतिपालक है, तू राखा है सबे जी समा, तू सारिया ते मेर कर। जो ईरखा, द्वेष, वैर, विरोध जो मना च अग लगी हुई है दूर कर, सारे अनु समत बख्श। जगत सड़ रहे है, अगा लगिया हुई ने, तू कृपा कर, तू मालक है सारिया ते कृपा कर। जगत जलंदा रख ले अपनी कृपा धार, जित दुआरे उभरे जिते ले हो ओबार। तू सारिया ते मेर कर, सारे तेरे ने, तू सारिया की कृपा कर। ये अरदास है कि अन्न पानी मुच उपाए, ये पदार्थ सारिया नू दे, सारिया ते कृपा कर। दुख दलिद्र भन दर सारिया का दुख दूर कर, दलिद्र ये सब दूर कर, तू सारिया ते मेह कर।